कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब का नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते। किती वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

0: आवे।
1: मेरी जात होछी है, मेरी पत होछी है, पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नु नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नु वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

कुछ है खोज शब्द मिले खालसा सो गुरु हित लावे। झूठे गुरु दे पिछे जाण दी कोई जरूरत नहीं। सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गद्दी देण लग्या इक गल कही सी, कहण लगे भाई साडा शरीर अज है कल नहीं होएगा, पर मैं तुहानूं गुरु ऐसा दे चलिया जो इत्थे उत्थे तुहाडे हमेशा ही नाल रहेगा, हमेशा तुहाडी अंग संग सहायता करेगा। ओ गुरु कौन है? शब्द ही है होर कोई नहीं। मत मन अंदर कोई ऐसा परम आ जाए, शब्द गुरु पवन गुरु, गुरु शब्द है वहां गुरु, गुरु शब्द सुनाया, शब्द कोई अड का गुरु नहीं, जा गुरु नानक ने नहीं आख दिता, ए शब्द गुरु जदों की सृष्टि बनी उदों का चलिया है शब्द गुरु। ते साहब आखते नहीं खालसा सो जो गुरु हित लावे, खालसा सो गुरु हित लावे, खालसा सो मास

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मुर्शे का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। फितर शब्द में बताया, श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितृ शब्द में और बोला, ओहो जे जिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यो टूट पड़ी ऊट चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों भाई, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, तत्लाती है। मात को क्या हो गया, बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो वाहिगुरु, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं, एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचनचेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिगरा था, माखियों का डिगरा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा एक काला उस रस्सी को काट दिया, वो खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली, इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए।
वो ऐसे ही है। देख लेना, किसी को ये बताओ, कभी कह कर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं आप भी पूछ कर देख ले। हम पूछते हैं, एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। किसे ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर मरेंगे। हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक कितने जवान जोबन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, न बारिक न जोबन न बिरदी कछ बंद, ओ वेला न बूझी है जो आए परे जम फंद। कितने आए कितने चले गए, ये भी बताया गया, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना, जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्म में सो जन्म हुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हम ने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए। जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है। खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा। ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है, अखुवाई करो।
لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے. وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے, اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں, ایسے نہ کرو ایسے کرو. ایسے ہی جب ہم سنسار میں آئے, ہمارے آنے سے پہلے ہمارے بزرگ ماتا پتا دادا دادی آدھ ایک ایسے بزرگ آئے ہوئے تھے, ہمارے آنے سے ہمارے گھر میں بہنیں آئیں, آخو آئے, میرے بھائی آئے, میرے آنے سے میرے گھر میں بیٹی آئی بیٹے آئے. دیکھو ہم آئے سب پروار دیکھا, کسی کی کیا مجال ہے, ہمارے کسی چھوکرے کو کسی بزرگ کو کوئی بول سکے, ہم جھگڑا کرتے ہیں. لیکن جب مالک پربھو آپ آ جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کبھی 5 سال کا بوٹا لے جاتا ہے, کبھی 10 سال کا لے جاتا ہے, کبھی 50 سال کا لے جاتا ہے, کبھی 60 سال کا لے جاتا ہے. ہم کیا کریں, ہم تو یہی بولتے ہیں, جس تھاکرسیوں نہ ہی چارہ تاں کو کی جائے ساتھ نمسکار. ہم تو یہی بولتے ہیں, نانک بولن چکھنا دکھ چھڈ منگی ہے سکھ, سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہرے جائے منکھ, جتھے بولن ہاری ہے تتھے چنگی چپ. جتھے بحث نہیں کر سکتے, آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, وہاں پر تو چپ ہی کرنی پڑتی ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے کھیت وہاں پر ہی رہ جائے, رکھوالے کوئی لے جائے. ایسے بھی ہو جاتا ہے پروار یہاں ہی, ہم اپنے آپ کو اس پروار کا مکھی مانتے تھے, وہ مکھی کوئی لے جاتا ہے. اس لیے سمجھاتے ہیں, آپ تو کہتے ابھی تو نہیں, ہم ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے پھر نام جپ لیں گے. ارے بھائی کیسے جپیں گا, جب نینو نیر پہ تن کھینا پے کیس تو دوانی, رودا کانٹ شبد نہیں اچرے اب کیا کرے پرانی. جب آپ کا گلا کھاؤں کھاؤں کرے گا پھر جپ لیں گا, آنکھوں میں پانی نرنتر بڑھے گا بہے گا پھر جپ لیں گا, نہیں جپ سکے گا. کہندے ارے بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ نے تو کیا کرنا ہے, کیا نبھانا ہے, آپ کے جو شریر کے انگ ہیں نا

बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते? आखो भाई, ऐसी उलझन में बंधा हुआ आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है? आखो भाई, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा। भूलो रे ठग मूरी खाए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु, मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना, जो हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको गवाकर को तो जी भी नहीं सकते। ये सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं भुलाया है। आखो वाहिगुरु, जब हम ये बोलते हैं भुलाया है, तो पितृवाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं भुलाया गया है। आखो वाहिगुरु, भूलो रे। भगत जी ने कमाल कर दी, बिस्माती विचार प्रगट कर दिए। आखो वाहिगुरु, भूलो रे, देखना ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मानमुख भूले भुलाई है, भूली ठोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला के भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ताशाहिब कहते हैं, बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने भुलावड़ों से भुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जाने। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो भाई, ए पलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला, भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो भाई, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो भाई, जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी, ठग ओरी, भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली।

कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ ज्ञान का पदार्थ जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं, ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर, जे अगर मन वाला मनुख होकर मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता सिर्फ तन को पहचानता है तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है। जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों भाई करो, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आंखों भाई करो, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोह, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोह, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो, आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता,
और जीभ के चस्कों और पदार्थों के भोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीभ के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के भोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पाप माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इसनु अपना आप भूल जाता है ते माया दे जाल विच आखो आए अपने आप को भुलाकर माया के बंदर में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना जिमें मद मक्खी शहद की मक्खी, आखो वाहे शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ जमदूत उसको लेने आ गए, वो बोला ऐसे करो भाई मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा ये धन आगे नहीं जा सकता, कहते आधा ले लो, फिर पीटा कहते पूरा ले लो मुझे छोड़ जाओ, फिर पीटा कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे।
धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै। कहत नाम दियो तांची आन, निरपो निरपै होए भजिए भगवान। भगत नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यो लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साढ़े अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਏ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਏ

सागर ज्ञान दा, सागर आत्मक सुखां दा, सागर अकाल पुरख दी सच्चाई ते वडियाई दा, सागर सच्ची ते सुच्ची बाणी दा।

लक्ष्मी पैसिया नू के माया नू हुण जिहड़ा मत्था टेकदा है वो पैसे भी रखदा है ते लक्ष्मी इस तरह वरसन लग पई जिस तरह मीह पैंदा है भाव गुरु साहिबां दे चरणां दे अगे माया दा ढेर लग गया।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, तो सारे पांड सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ तो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धा नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धा ने लुको ए लोटा, सिद्धा ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, पांड साडे कोल आणगे, ते असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धा ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ उहदे कोल, उस नूं आखो जे उहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ।

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धां दा लुकोया लोटा कोई लब नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धां नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है, तियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ते पंगरनाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

ना जाती हो, तेरी मां ने, तेरे गुरु ने तेरे मन का भांडा चंगी तरह धोता नहीं, भाव तेनू चंगी सिख्या नहीं दिती। केड़ी सिख

असल विच कुछ जोगी होए महापुरुष जेड़े अपना जप तप गुआ बैठे औरत ते मोहित हो के। हुण जे कोई अपना जप तप गुआ बैठा है तो उहदी अपनी कमजोरी। इन्हां लोकां ने यह नियम बना दिता कि औरत जिहड़ी है भगती दे राह विच रुकावट है। इसे वास्ते कहो जिहा दौर चलिया कि औरत नूं यह कह दिता गया जिथे रब फेल हो गया उन्हें औरत बना दिती। औरत भगती दे विच विघन है। इथों तक लिखिया गया कि रब जिते फेल होया उथे औरत बनाई। किसे ने किया औरत रब दी एक मजेदार गलती है। किसे ने किया औरत पैर दी जुत्ती है। इथों तक कह दिता टोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचो ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास वर्गे महापुरुष भी कह गए कि औरत पशु मूरख ते शूदर इन्हां नूं ताड़ के रखना चाहिए। उन्हां दी निगाह विच औरत पशु मूरख ते शूदर विच कोई फर्क नहीं। पर तां गुरु नानक साहब कहन लगे नहीं यह गलत है। एक कैसा तुहाडा समाज है किधरे औरत नूं देवी बना के पूजदे हो ते किधरे औरत नूं पैर दी जुत्ती कहंदे।

गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी याद विच बतीत कीता। अज बिरत अवस्था है भाई साहब नंद लाल जी दी, शहर करदे आ रहे हन ते की तकिया बच्चे खेडां पा रहे हन। भाई साहब नंद लाल जी धरती वल वेख के ना कुछ लभण लग गए, जिवें कुछ गुआच जांदा ते लभी दा। बच्चे सारे इकट्ठे होके आ गए, चलो भाई बाबे दा कुछ गुआच गया ते लभ दईए। सारे बच्चे आके पुछण लगे, बाबा की लभ रहे हैं, तेरा की गुआच गया, असी तैनू लभ देंदे हां। तां भाई साहब नंद लाल जी कहण लगे, जो मेरा गुआचे है ओ तुसी लभ के नहीं दे सकदे, फिर भी बाबा दसदा सही तेरा की गुआचे है। तां भाई साहब कहण लगे, मेरा जवानी दा हीरा गुआच गया, मैं ओ लभ रहा। ते आपदा मन जुड़ गया कलगीधर पातशाह जी दे चरणा विच, ते फिर आप मुंह कुछ बोल उठे, कहन लगे, जवानी गई बुढ़ेपा आया, उम्रा लगी किनारे, पर जेड़े बीते नाल तुहाडे सोई भले दिहाड़े। हे कलगीधर पातशाह, दिन तां ओ सन जो तेरे चरणा विच बीत गए, बाकी उम्र तां उमस्या दी काली रात वांगू बीती मेरी, इसलिए जवानी गई।

ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है मैं ते अवगुणा दा परिया तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा शारीरिक रूप नहीं वेखदा

को धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब ते की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों, उस दी मंजिल नालों, उस दे डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, इसका अर्थ ए होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि ओ जा किधर रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत ए है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापा दा भागी बन जांदा है। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

हुरमत हुरमत में ना मन नेचल होए ना उन मन लिवलाई अंग अंग भंग रंग रूप।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तैनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तैनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तैनू प्रवान करन वास्ते, तैनू प्रवान होण वास्ते, तैनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखां ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तैनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तैनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तैनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी सारी। ऐसी अवस्था च मैं तैनू प्राप्त किवें होवां, तैनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां, जद यह जानना कि तेरा बिरध बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा। जिसले मैं तेरे बारे यह जानना तेरे बारे सुनदा समझदा मैं मनदा हां, जो हम अदम कर्म कह पतित पहे, माड़े कमा करके असी तो पापी हो गए, पर तेरा भी तो ना पतित पावन प्रभ नाम प्रगटायो है, तेनू तो लोग कहंदे ने पापियां नू पवित्र करन वाला। जो पहे दुखी अर दीन, पर चीन लग पुराने, माड़े कर्मा करके दुखी हो गए हां, कि तेरा भी तो ना दुख भजन दीन दुख भजन बिरद बिरद आयो है, तेरा भी तो सुभा पुराना है कि दीना दे दुख दूर करदा है। जौ ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी पए, माड़े कमां दे बंधन च पए होए, असी जूंदे ही नरक च पए गए। कुछ तां हुंदे ने मरन तो बाद नरकां च जाणगे, ऐसा सोची बैठे ने, नरक तो डरदे ने, पर मेरे माड़े कमां ने तां मैनू इत्थे ही नरक बना के रख दिता। हिरदे विच नरक बन गया, घर च नरक बन गया, जीवन की जुगत होवे ते घर स्वर्ग बन जांदा, हिरदा ही स्वर्ग बन जांदा। जीवन का ढंग ठीक ना होवे, एक हिरदा की ते एक घर की, आले दुआले नूं बंदा नरक बना के रख दिंदा। मरण तो बाद ते नरक दीआं गल्लां इक पासे, जीवन विच भी नरक स्वर्ग चल रहे। कुछ ऐसे भी ने जिहड़े कंडियां दी सेज ते भी स्वर्ग बना बैंदे, ते कुछ ऐसे भी ने माड़े कम्मां वाले मेरे वर्गे जिहड़े फुल्लां दी सेज ते भी नरक खड़ा कर लैंदे। मेरी करनी तां इस तरह दी है, मैं तां नरक निवासी हो गया, मैं नरक बना लिया, मैं जिउंदा ही नरक च पै गया। पर नरक निवारण जगत जस गाया, लोकी तेरा जस गाउंदे ने, तूं नरकां विचों कढ लैण दी समर्था वाला। ते नाले इक गल होर है, संसार दीआं गल्लां होर ने, निरंकार दीआं गल्लां होर सुणीआं ने। संसार दी गल तां इह है कि हर कोई इह सोचदा है कि मेरे नाल किसने की कीता है ते मैं उहदे नाल की करां। जरा जिहा प्रतीत हो जावे कि मेरे नाल किसे ने बुरा कीता ते बंदा व्यौंता करदा है कि हुण मैं किहड़े वेले उहनूं चार हथ विखावां। ते जे किते इह अहसास हो जावे, महसूस हो जावे किसे ने मेरे नाल भला कीता ते बंदा चाहुंदा इह भाजी हुण कदों मुड़ां। पर यह तो संसारियां दीआं गल्लां ने, हिसाब रखण वालियां दीआं गल्लां ने, ते तेरे नाल तां हिसाब नहीं रह सकदा, क्योंकि जितने तू गुण मेरे नाल कीते ने, जिन्ने तू मेरे ते परपकार कीते ने, जे मैं उन्हां दा हिसाब करन बह जावां ते शर्म नाल
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ।